0: में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: अहिल्या FM 90.4, इट्स रिदम ऑफ पालघर।